आज मेरा दूल्हा नहीं कम किसी राजे से, आज मेरा दूल्हा नहीं कम किसी राजे से, आई बारात बाजे गाजे से, आई बारात बाजे गाजे से।

तेरे मंजिल की वो तेरी मंजिल की तस्वीर बन जाऊंगी। मंजिल का साथ है, मिलने की याद है, तू क्यों उदास है।

प्यारे प्यारे फगन मीठी मीठी चुभन प्यारे प्यारे तड़पती हूँ मैं आरज़ूए छुपाए तड़पती हूँ मैं आरज़ूए छुपाए तो कहाँ पता थी।